0: इंस्पेक्शन ऑफिसर का मैं होगा।
1: Roger, just gotta clear off the bridge.
0: Roger, open up my side over here.